0: कि ऋतिक रोशन एक बार सीरियसली उनके फिजिक को लेते हैं तो क्या मोटिवेशन उनको इंस्पायर करती है, आई डोंट नो, लेकिन वो ऐसा कुछ कर देते हैं, ऐसा फिजिक, ऐसा लुक बना देते हैं कि बस दुनिया देखती रहती है। एंड इसमें बहुत सारे सुपर हीरो वाले एक्शन सीन्स होने वाले हैं। डायरेक्टर राकेश रोशन और ऋतिक रोशन इस पर कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहते। तो भाई अब सुपर हीरो क्रिश एक बार फिर से थिएटर्स में तबाही मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी फैंस जो है इनके बीच जो है बातचीत चल रही है, वॉर भी चल रहा है जो हमेशा चलता है। एंड अब बस ये देखना है कि इस फिल्म का विलन कौन होने वाला है। जैसे ही पता लगता है तो डेफिनेटली आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। एंजॉय करते हैं अगला ये गाना, सुनते रहिएगा रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: प्यार है इंडिया से, यारी है मशीन से, उड़े चाहे आसमां में, दिल है जमीन पे।

एक और बेहद धमाकेदार खबर उड़ती हुई आ रही है और ये फिल्म धूम 4 के बारे में है। जी हाँ, आपने सही सुना, धूम 4। चर्चा बहुत ही चल रही है कि इस बार धूम 4 में हमें बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर जोड़ी यानी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। क्या बात है। बताया जा रहा है कि रणवीर सिंह इस बार फिल्म में वो चोर या विलेन वाला आइकॉनिक रोल प्ले कर सकते हैं जिससे पहले जॉन अब्राहम को कैसे भूल सकते हैं यार। देन ऋतिक एन उसके बाद आमिर कर चुके हैं, वही दीपिका पादुकोण एक बहुत ही एक्शन वाली कॉप पुलिस ऑफिसर के रोल में नज़र आ रही है। अगर ये खबर पूरी तरह से सच साबित होती है तो आप खुद सोचिए कि थिएटर में कितनी लंबे लाइनें लगने वाली है। एंजॉय करते हैं, अगला गाना सुनते रहिएगा रेडियो नायरा।

करते हैं बॉलीवुड के नए शहजादे कार्तिक आर्यन की। कार्तिक आर्यन के सितारे इस समय बुलंदियों पर है और आज ही उनकी एक नई फिल्म का ऐलान हुआ है। ये एक प्योर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होने वाली है जो कि कार्तिक आर्यन का सबसे मजबूत जोन माना जाता है। भूल भुलैया के बाद कार्तिक एक बार फिर से करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। फिल्म की कहानी आज के ज़माने के मॉडर्न रिलेशनशिप्स और उनके कन्फ्यूजन पर बेस रहेगी। कार्तिक आर्यन के अपोजिट एक फ्रेश जोड़ी भी देखने मिल सकती है एंड जिसके लिए फिलहाल ऑडिशंस चल रहे हैं। कार्तिक के फैंस कह रहे हैं कि यार कार्तिक आर्यन जो है वो सीरियस रोल से ज़्यादा लव स्टोरी एंड कॉमेडी में ज़्यादा सूट करते हैं। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना, क्योंकि इस गाने का म्यूज़िक काफ़ी बेहतरीन है। सुनते रहिएगा रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

अब वक्त है मेरे लिसनर्स को कहानी सुनाने का। तो आज की कहानी है राघव की। राघव शहर में रात को कैब चलाता था। रात के करीब 2 बज रहे थे एंड हर तरफ काम शांति पसरी थी एंड कोहरा धीरे धीरे सड़कों को अपने आहोश में ले रहा था। तो राघव गाड़ी खड़ी कर रहा था एंड चाय पीने उतर रहा था कि अचानक एक बूढ़े बुजुर्ग उसके गाड़ी की पिछली सीट पर आकर बैठे। सफ़ेद बाल, आँखों में एक अजीब सा डर और चेहरे पर हल्की मुस्कान। तो राघव ने पीछे मुड़कर कहा एंड पूछा, बाबूजी कहाँ जाना है? बुजुर्ग ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, बेटा बस सीधे चलते रहो, जहाँ मेरा घर आएगा मैं आपको बता दूंगा। देन गाड़ी चल पड़ी एंड धीरे धीरे क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा ज़रूर इस गाने के बाद। सुनते रहिएगा रेडियो नारा, पक्का देसी पक्का लोकल।

अब उठ रहा है मेरे लिसनर्स को कहानी सुनाने का। तो आज की कहानी है राघव की। राघव शहर में रात को कैब चलाता था। रात के करीब 2 बज रहे थे एंड हर तरफ काम शांति पसरी थी एंड कोहरा धीरे धीरे सड़कों को अपने आहोश में ले रहा था। तो राघव गाड़ी खड़ी कर रहा था एंड चाय पीने उतर रहा था कि अचानक एक बूढ़े बुजुर्ग उसके गाड़ी की पिछली सीट पर आकर बैठे। सफ़ेद बाल, आँखों में एक अजीब सा डर और चेहरे पर हल्की मुस्कान। तो राघव ने पीछे मुड़कर कहा एंड पूछा, बाबूजी कहाँ जाना है? बुजुर्ग ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, बेटा बस सीधे चलते रहो, जहाँ मेरा घर आएगा मैं आपको बता दूंगा। देन गाड़ी चल पड़ी एंड धीरे धीरे क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा ज़रूर इस गाने के बाद। सुनते रहिएगा रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

दस मिनट बीते, आधा घंटा बीत गया, अंदर से कोई बाहर नहीं आया। राघव को थोड़ी झुंझलाहट हुई। उसने गाड़ी लॉक की और उस पुराने मकान का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक अधेड़ उम्र की महिला बाहर आई। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे वो सदियों से सोई ना हो। राघव ने कहा, अभी जो बुजुर्ग अंदर आए हैं, उन्होंने मेरे कैब से ट्रैवल किया और पैसे देने के लिए अंदर बुलाया था, तो उन्हें थोड़ा बुला लीजिए। महिला ने राघव को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बहुत ही भारी आवाज़ में कहा, तुम कौन से बुजुर्ग की बात कर रहे हो? इस घर में तो मेरे अलावा कोई रहता नहीं। राघव चौंक गया। उसने कहा, वो सफ़ेद वाले, सफ़ेद बाल थे उनके और वो अभी अंदर आए थे, वो एंड उसके बाद जो हुआ वो क्या था?

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन है चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

आप हमारे रेडियो नायरा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल प्ले स्टोर से। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली टाइप करना है रेडियो नायरा, आपको मिल जाएगा हमारा ऐप। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप सुन सकते हैं हमारे आरजेस के एंटरटेनमेंट से भरपूर शो एंड एंजॉय कर सकते हैं अनलिमिटेड म्यूजिक। आप देश एंड दुनिया के किसी भी कोने से रेडियो नायरा को सुन सकते हैं, बस आपका नेटवर्क जो है वो अच्छा होना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच रेडियो नायरा एंड निर्वाणा नाइट्स को इतना सारा प्यार देने के लिए। ये प्यार आपका यूं ही बरकरार रहे। एंड फिलहाल एंजॉय करते हैं ये अगला गाना। एंड मैं यही कह रहा था यार, ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा करने से तो यू नो कैसा होता है। और आजकल मेंटल हेल्थ के बारे में तो बहुत सारी प्रॉब्लम लोगों को हो रही है, तो बस खुश रहना है एंड एंजॉय करना है अगला ये गाना।

आप हमारे रेडियो नायरा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल प्ले स्टोर से। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली टाइप करना है रेडियो नायरा, आपको मिल जाएगा हमारा ऐप। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप सुन सकते हैं हमारे आरजेस के एंटरटेनमेंट से भरपूर शो एंड एंजॉय कर सकते हैं अनलिमिटेड म्यूजिक। आप देश एंड दुनिया के किसी भी कोने से रेडियो नायरा को सुन सकते हैं, बस आपका नेटवर्क जो है वो अच्छा होना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच रेडियो नायरा एंड निर्वाणा नाइट्स को इतना सारा प्यार देने के लिए। ये प्यार आपका यूं ही बरकरार रहे। एंड फिलहाल एंजॉय करते हैं ये अगला गाना। एंड मैं यही कह रहा था यार, ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा करने से तो यू नो कैसा होता है। और आजकल मेंटल हेल्थ के बारे में तो बहुत सारी प्रॉब्लम लोगों को हो रही है, तो बस खुश रहना है एंड एंजॉय करना है अगला ये गाना।

पर इट वाज़ अ नाइट्स एंड अब वक्त हो चुका है कि सब लोग अपने प्यारे लोगों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, कोई लोग घर जा रहे हैं, कोई कल की प्लानिंग कर रही है, किसी का मूड फ्रस्ट्रेट है, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है यार। आज का दिन अगर आपका नहीं है तो कल का दिन आपका डेफिनेटली आएगा, एंड आज का आपका दिन बहुत अच्छा हो तो कल इससे भी अच्छा दिन आएगा। तो ये 7 से 10 का टाइम आप लोगों के साथ बातें करते करते कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कल मिलूंगा आपको निर्वाणा नाइट्स शो पर, जो कि रेडियो नायरा पर आता है 7 से 10, एंड कोई भी चिंता नहीं करनी है, लाइक आराम से रहने का, खाने का, पीने का, अपना काम करने का, दैट्स इट। एंड अब वक्त हो चुका है कि मैं आपको एक अच्छा सा गाना सुनाऊं एंड कल आपको मिलूं। तब तक के लिए खुश रहिए एंड बस यार, बाकी तो सब बढ़िया है, एंजॉय करते हैं अगला ये गाना। गुड नाइट, शबा खैर।

नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: Hey guys, hit the subscribe button right here to catch more of The Shulky.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल.

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज्ड बाय एआर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

निकल चली है, दिल की हालत संभल चली है, अब जुनून हद से बढ़ चला है, अब तबीयत बेहाल चली है।

हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में। क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू?

0: बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
1: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स।
2: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Loka.

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

I am back on 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Dunes and Talk. Well, good morning, morning hai ji aur wahi apna purana routine shuru hai. Ghar se office, travel, work aur bhai kaam ka tension. But thinking not, aapke day ko relaxing banane ke liye main aapko Triangle ki special masaledar khabrein sunane wali hu. और ऑब्वियसली मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है. वैसे अभी तक ढेर सारी गपशप चल रही थी आपकी हमारे दोस्तों के साथ और नाउ मेरी बारी है आपको एंटरटेन करने की. सो गेट रेडी, मैं ढेर सारी इवेंट अपडेट आपको देने वाली हूँ और हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल होने वाली है सब कुछ आपको बताने वाली हूँ. इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना,
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: प्यार है इंडिया से, यारी है मशीन से, उड़े चाहे आसमां में, दिल है जमीन पे।

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM SD4, 4090 AM एंड 99.9 FM SD3 for Telugu Naira Fame. मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक. हमारे ट्रायंगल में 2060 इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला है. इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल IBTF रोल आउट द पर्पल कार्पेट एवरी अदर समर ट्रांसफॉर्मिंग विंस्टन सलेम इनटू द मेगा परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर विद मोर देन 120 परफॉर्मेंसेस इन नंबर ऑफ द सिटी वेन्यूज. Artists, audiences and industry leaders from across the globe unite for an electrifying

to many stage production, engaging program and cultural exchange. Main stage production ticket will be announced and available for purchase. It's all start. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, इनकी और जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। पक्का देसी, पक्का लोकल।

एक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 49 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल ट्यून्स एंड टॉक उन खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन जिसमे है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक और डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान 9 जेम्स ज्वेलरी जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट 9 जेम्स ज्वेलरी वेस्ट कैरी 27519 अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454 फिलहाल कहीं जाइए या नहीं सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल

अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम HD4 और 4090 एएम एंड 99.9 एफएम HD3 फॉर तेलुगु दायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डून संटॉक। पता है बहुत थके आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है। वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं। इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ।

0: about.
1: Yeah. भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बज लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना,
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर।
3: Oh my God, this is original.

होने वाला है। हेडिंग द 2026 इवेंट इज द रिटर्न ऑफ लेजेंडरी यूएस नेवी ब्लू एंजल्स जॉइंड बाय एक्साइटिंग लाइनअप ऑफ मिलिट्री एंड सिविलियन एक्ट दैट कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड कैप्टिवेट फन फेवरेट परफॉर्मेंसेस सच एज जेट ट्रक पैराशूट जंप टीम एंड एरोबैटिक पायलट एंड रैंडी बॉल RJ Glitter and Tom Larkin are already slated to return. The show is free and open to the public throughout. The base pass is required for entry. For more information, check their website. Filhal kahin jaiye nahi, sunte rahiye Monica ke saath Radio Nayana, Paka Desi, Paka Local.

अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD 4 for 90 AM and 99.9 FM HD 3 for Telugu. Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं Triangle Tunes and Talk. Well, Morrisville, ready हो जाओ. आपका नया hangout spot आ रहा है. Introducing Ratcha Banda Food Truck, authentic Indian street food का असली स्वाद. अब आपके शहर में गर्मा गर्म समोसे, crispy डोसास, चपाती, चाट and flavor जो सीधा दिल तक जाए. ये सिर्फ फूड नहीं, ये है घर जैसा टेस्ट स्वीट वाले ट्विस्ट में. ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल, आओ और पाओ एक सरप्राइज ट्रीट ऑन द हाउस. दोस्तों के साथ चिल करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो या खुद को ट्रीट दो, क्योंकि राचा बांडा में है हर बाइट फील लाइक होम. नाउ अराइविंग इन मॉरिस विलेज, कमिंग सून राचा बांडा, जहाँ टेस्ट भी मस्त और वाइब भी बेस्ट है. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल.

0: इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4.90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल टूल्स एंड टॉक्स।
1: वेल हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी स्पीच पाथवे सेलिब्रेट होने वाला है। वी आर हाइडिंग 20 क्राफ्टेड ग्लास स्पीचेस अलोंग ट्रायल थ्रू आउट द सैंड हिल एंड इट्स योर जॉब टू फाइंड देम। Each glass of speech is one of a kind of treasure waiting to be discovered, created by friends at Starworks. List up your hiking shoes, grab your friend or family, and hit the trail for this fun. Free adventure celebrating the beauty of nature and spirit of summer in Sandhill. Each day on our live social media will announce trail for the hunt, so stay tuned. Filhal ke liye jaiye nahi, sunte rahiye Monica ke saath Radio Nayra, Pakka Desi, Pakka Local.

Welcome here on 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for the 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Tunes and Talk. Kahan dara maine aapse ki entertainment ki koi kami nahi hogi. Dekha baaton baaton mein third hour mein pravesh kar gaya hai aur still hamari baatein continue rehne wali hai. ढेर सारी मसालेदार खबरें ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ. पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, कुछ कहानियाँ कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं, या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं ऑन 9192944800 पर और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर. फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल.

0: Is the Market Hour Gaadi Ke Baad one more time. Welcome here on 101.9 FM, 99.9 FM, LG4 for 90 AM and 99.9 FM, LG3 for Telugu. Naira se main hoon aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Tools and Talk. ट्राइंगल में बहुत जल्दी विंडो वर्ल्ड 450 नॉट विक्स ओरो स्पीडवे सेलिब्रेट होने वाला है. डोंट मिस द विंडो वर्ल्ड 450 एट नॉट विक्स ओरो स्पीडवे. एक्सपीरियंस थ्रिलिंग NASCAR एक्शन लाइव. सी द रोर ऑफ इंजन एंड प्योर एक्साइटमेंट ऑफ हाई स्टेक्स रेसिंग. पॉइंट रेसिंग इज बैक एट नॉट विक्स ओरो. इट्स समर टाइम एंड स्पेक्टेकल्स एट वन ऑफ द NASCAR's मोस्ट हिस्टोरिक ट्रैक. Don't miss epic tailgate and high-stake racing among the NASCAR's elite driving and team. The race is on. Multi-platinum country hitmaker is waiting for you. Filhal kahi jaiyega nahi, sun rahiye Monica ke saath Radio Nayra, pakka deshi, pakka local.
1: Tujhe dekh ke pata hai kya lagta tha? Ki tu kuch bahut bada karega. Kitna potential hai tujh mein. Kya ho gaya? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू?

0: मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM 99.9 FM HD4 499 AM 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल ट्यून्स एंड टॉक। वेल हमारे ट्रायंगल में रेडियो नायरा और चेरिस्ट मूवमेंट प्रेजेंट कर रहा है कृष्ण भक्ति का सबसे बड़ा म्यूजिकल सेलिब्रेशन। भक्ति की वाइब, म्यूजिक की एनर्जी और सेलिब्रेशन का धमाकेदार संगम। इस कृष्ण जन्माष्टमी तैयार हो जाइए एक ऐसी शाम के लिए जहां होगा डिवोशनल म्यूजिक एंड सेलिब्रेशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लाइव भजन की डिवाइन फीलिंग, एजे द डीजे के साथ मॉडर्न क्लबिंग बीट, भक्ति में डांस, म्यूजिक में मैडनेस। इंडियन एथनिक ड्रेस में आइए और बनाइए इस शाम को और भी स्पेशल। फूड एंड ड्रिंक्स आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आइए और मनाइए कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल भजन क्लबिंग। भक्ति की गहराई, म्यूजिक की एनर्जी और सेलिब्रेशन का परफेक्ट संगम ऑन 5th सितंबर सैटरडे 2026 7 PM टू 11 PM होकी एंटरटेनमेंट कैरी नॉर्थ कैरोलिना। अर्ली बर्ड टिकट सिर्फ $20 से शुरू। और सबसे खास बात, पार्ट ऑफ द प्रोसीड्स विल गो टू द राधा कृष्ण टेम्पल। वन रिदम वन हार्ट, एवरीवन इज वेलकम।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 440 90 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर नाइनटी एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु. नायरा सेम है, हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक. वेल, हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी ग्रासी क्रीक एंड जेम मिनरल शो होने वाला है. एक्सप्लोर अ वाइब्रेंट वीक लॉन्ग आउटडोर शोकेसेस ऑफ जेम मिनरल फॉसिल ज्वेलरी एंड लैपिडरी सप्लाई एट द ग्रीसी क्रीक मिनरल एंड जेम शो इन स्प्रूस पाइन. With more than 60 vendors from around the world, this family-friendly event offers something for collector and enthusiasts alike, from stunning gemstones to laboratory tools to unique specimens. Hosted by Braver, Fire and Refuse to support local equipment purchase, the show features free admission and passing on-site food and open to all ages. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नाइन. पता देसी, पता लोकल.

गाना था ना एक नंबर, मुझे तो मजा आ गया, आपको भी अच्छा लगा ना। वेल 101.9 FM 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल ड्यून्स एंड टॉक। लगता है मैं अभी अभी तो आई थी और अभी कहाँ जाने का वक्त हो चला है, और फिकर नॉट, आपके एंटरटेनमेंट में और मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली, ये रेडियो नायरा का और मेरा पक्का पक्का आपसे वादा है। हमारे होस्ट और मैं आपको साथ में एंटरटेन करते रहने वाले हैं ऑन 101.9 FM 99.9 FM HD4 for 90 AM एंड 99.9 FM HD3 for तेलुगु। रेडियो नायरा सुन रहे हैं आप, या आप प्ले स्टोर जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं हमारे साथ। वेल, कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय ओनली ऑन ट्रायंगल ट्यून्स एंड टॉक पर ट्रायंगल की स्पेशल मसालेदार धमाकेदार खबरों के साथ। वेल, अगला गाना स्पेशल आपके लिए बजने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज जूल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: लुकिंग फॉर द परफेक्ट समर फैमिली नाइट आउट? जॉइन द नॉर्थ कैरोलिना करेज ऑन वेडनेसडे ऑगस्ट 26th एट 8 p.m. एज दे टेक ऑन एंजल सिटी FC. Featuring U.S. Women's National Team star Gisele Thompson. It's professional women's soccer at its best. Non-stop action on the field, plus family-friendly fun and entertainment before and during the game. And with no ticket fees, free parking, and affordable prices, it's the easiest night out you'll plan all summer. Get your tickets now at tickets.nccourage.com. See you August 26th.
2: Night Out 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM. Pakka Desi, Pakka Loka.

न्यूज़ में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD 44 1090 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

हेलो हेलो हेलो पीपल, प्रणाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, एंड अ वेरी वेरी वार्म हेलो टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। हाँ गई, मैं प्राची, आप सुन रहे हैं सुनसरा रेडियो 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम और 4090 AM पर। और आज का टॉपिक थोड़ा सा दिल से और करीब, क्योंकि आज हम बात करेंगे, सोचिए सोचिए, गाने ने आपको हिंट तो आज दे ही दिया है ना। सो एक छोटा सा धागा, एक तिलक, एक ब्लेसिंग और एक रिश्ता, रक्षाबंधन। यस, लेकिन आज मैं आपसे सिर्फ ये नहीं पूछूंगी कि राखी किसने बांधी, अभी तो क्योंकि आया ही नहीं है, फ्राइडे को है तो हम प्री सेलिब्रेशन कर रहे हैं। गिफ्ट में क्या मिला, भाई ने कितने पैसे दिए, आज हम थोड़ा पीछे चलेंगे, बहुत पीछे, इतना पीछे कि हम मॉडर्न राखी के कलरफुल पैकेट से निकल कर एंशियंट इंडिया के रिचुअल्स, संस्कृत टेक्स्ट, माइथोलॉजी, ओरिजिनल ट्रेडिशंस और हिस्ट्री, हम सब वहाँ तक पहुँचेंगे। क्योंकि एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या रक्षाबंधन हमेशा से सिर्फ भाई बहन का फेस्टिवल था? और इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। आज जो हम रक्षाबंधन जानते हैं वो एक लॉन्ग कल्चर इवोल्यूशन का रिजल्ट है। एंशियंट इंडिया में प्रोटेक्टिव थ्रेड्स और सेक्रेट कॉर्ड्स की ट्रेडिशन मिलती है ना, डिफरेंट रिचुअल्स में थ्रेड को जो प्रोटेक्शन, ब्लेसिंग्स, वाओ और सेक्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंबल माना जाता था। यानी थ्रेड पहले था, प्रोटेक्शन का आइडिया पहले था, सिबलिंग फेस्टिवल के रूप में राखी का मॉडर्न फॉर्म बाद में स्ट्रांगली डेवलप हुआ। और ये डिस्टिंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अक्सर फेस्टिवल को एक फिक्स्ड पिक्चर की तरह देखते हैं, जैसे रक्षाबंधन मतलब भाई बहन, लेकिन इंडियन ट्रेडिशंस को समझाने का एक ब्यूटीफुल तरीका ये है कि हम देखें एक रिचुअल का मीनिंग सेंचुरीज के थ्रू कैसे चेंज होता है। एक सिंपल थ्रेड, कभी प्रोटेक्टिव चार्म बन, कभी रिलीजियस सिंबल, कभी सोशल बॉन्ड, कभी पॉलिटिकल सिंबलिज्म और आज एक इमोशनल कनेक्शन। सो इमेजिन कीजिए, आपके हाथ पर एक थ्रेड बंधा है, आप उस थ्रेड को देखते हैं, उसमें कोई मैजिक नहीं है, वो आपको फिजिकली प्रोटेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो आपको एक चीज़ याद दिलाता है, किसी ने मुझे याद किया, और शायद इसी में उस थ्रेड की असली पावर है। हम ह्यूमन सिंबल के थ्रू रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करते हैं, है ना, वेडिंग रिंग, मंगलसूत्र, राइट, ग्रेजुएशन रिंग, रिलीजियस थ्रेड्स, फ्रेंडशिप बैंड्स और राखी, बहुत सारी चीज़ें ऐसे, तो सिंदूर। ऑब्जेक्ट छोटा होता है, मीनिंग बड़े होते हैं, और श्रावण का महीना भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। इंडियन ट्रेडिशनल कैलेंडर में श्रावण मानसून सीजन से जुड़ा हुआ है, नेचर, रेनफॉल, एग्रीकल्चर, रिलीजियस ऑब्जर्वेंस, सब कुछ इस सीजन से के कल्चरल रिदम से कनेक्टेड। इसलिए एक ही फुल मून श्रावण पूर्णिमा इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट मीनिंग्स लेकर आती है, कहीं रक्षाबंधन, कहीं नारली पूर्णिमा, कहीं उपाकर्मा, अवनियवितम, कहीं लोकल एग्रीकल्चर या कम्युनिटी ट्रेडिशन। और मुझे ये इंडिया की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ लगती है, बताएं, एक ही चांद, लेकिन इस चांद के नीचे सेलिब्रेशंस अलग अलग। आज के शो में हम एग्जैक्टली इसी जर्नी पर चलेंगे, हम कृष्णा और द्रौपदी की फेमस कहानी भी सुनेंगे, इंद्रा और इंद्राणी के प्रोटेक्टिव थ्रेड ट्रेडिशन समझेंगे, यामा और यमुना की कहानी देखेंगे शायद, अलेक्जेंडर और पोरस वाली पॉपुलर लेजेंड को हिस्ट्री की नज़र से देखेंगे, ठीक है, जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन को एक कम्प्लीटली डिफरेंट सोशल मीनिंग दिया था, यूनिटी। और फिर हम इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में जाएंगे, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रक्षाबंधन एक फेस्टिवल है या एक कल्चरल आइडिया? आज का शो नॉस्टैल्जिया भी होगा, हिस्ट्री भी, माइथोलॉजी भी, और थोड़ा सा वो, अरे मुझे ये पता ही नहीं था वाला मोमेंट डेफिनेटली होगा। तो आज मेरे साथ रहिए, क्योंकि आज हम राखी नहीं, राखी की कहानी खोलने वाले हैं। कभी किसी थ्रेड को देखा है और सोचा है इसकी वैल्यू इसकी मटेरियल में नहीं, इसके मीनिंग में है? सो एंजॉय दिस सॉन्ग, आई विल बी बैक।

0: सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।
1: Welcome back to Sansara Radio Nair on 99.9 FM HD4 101.9 FM of 1490 AM। मैं हूँ प्राची। अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ पढ़ते हैं, सीरियस वाली। अगर हम रक्षाबंधन के रूट समझना चाहते हैं तो हमें एक एजम्पशन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये एजम्पशन कि एंशिएंट इंडिया में भी एग्जैक्टली वही राखी सेरेमनी होती थी जो आज हम करते हैं। हिस्टोरिकल एविडेंस इतना सिंपल नहीं है। एंशिएंट इंडिया रिचुअल ट्रेडिशंस में प्रोटेक्टिव थ्रेड, सेक्रेट कोड्स जो भी, और रक्षा सूत्र का कॉन्सेप्ट मिलता है। यानी थ्रेड को एक सिम्बॉलिक प्रोटेक्टिव ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना बहुत पुराना आइडिया है। वैदिक और लेटर रिचुअल ट्रेडिशंस में सेक्रेट थ्रेड को प्रोटेक्शन, ब्लेसिंग और रिचुअल कमिटमेंट का के कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता। और संस्कृत वर्ड रक्षा का बेसिक आइडिया है प्रोटेक्शन, मतलब रक्षा करना, सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, मिसफॉर्च्यून और नेगेटिव फोर्सेस। अब सोचिए एंशिएंट सोसाइटीज़ में जब मेडिसिन, इंश्योरेंस, मॉडर्न इमरजेंसी सर्विस, वेदर फॉरकास्टिंग ये सब नहीं था तो इंसान अनसर्टिनिटी को कैसे डील करता था? रिचुअल्स, प्रेयर्स, ब्लेसिंग, सिंबल्स, कम्युनिटी और सेक्रेट ऑब्जेक्ट्स। थ्रेड एक विजिबल रिमाइंडर बन सकता था, मेरे लिए प्रोटेक्शन की प्रार्थना की गई है ना। यही कॉन्सेप्ट लेटर इंडियन कल्चर ट्रेडिशंस में डिफरेंट फॉर्म्स में दिखता है। इसलिए जब हम रक्षाबंधन को देखते हैं हमें एक सिंगल ओरिजिन स्टोरी के बजाय एक कल्चरल इवोल्यूशन समझना चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग बात, आज हम राखी को मोस्टली एक जेंडर रिलेशनशिप के साथ एसोसिएट करते हैं, जैसे कि सिस्टर टाइज ब्रदर। लेकिन ओल्डर प्रोटेक्टिव थ्रेड ट्रेडिशन नेसेसरली इसी रिलेशनशिप तक लिमिटेड नहीं थे। यानी प्रोटेक्टिव थ्रेड का कॉन्सेप्ट रक्षाबंधन के मॉडर्न सिम्बलिंग रिचुअल से वाइडर था। और इसीलिए मैथोलॉजी में भी हमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स मिलते हैं। आज हम कह देते हैं राखी मीन सिस्टर प्रोटेक्ट ब्रदर थ्रू अ थ्रेड। लेकिन एंशियंट सिंबोलिज्म में थ्रेड का मीनिंग हो सकता था ब्लेसिंग, प्रोटेक्शन, सेक्रेट प्रॉमिस, रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये आइडिया मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगता है, ब्यूटी बिकॉज अ थ्रेड डजंट फिजिकली प्रोटेक्ट एनीवन, इट क्रिएट्स अ फिजियोलॉजिकल एंड आई मीन लाइक सोशल कमिटमेंट। आपको पता है ह्यूमन बींग्स को प्रोमिसेस याद रखने के लिए सिंबल्स चाहिए। एक वेडिंग रिंग देखकर मैरिज याद आती है कि मैं मैरिड हूँ। एक मेडल देखकर सेक्रीफाइस अचीवमेंट याद आता है। एक ओल्ड फोटोग्राफ देखकर रिलेशनशिप याद आ जाता है, पुरानी बातें याद आती है। और एक राखी एक पर्सन को याद दिलाती है, समवन टाइड दिस बिकॉज आई मैटर। इसलिए रक्षाबंधन की हिस्ट्री सिर्फ राखी कब बनी का क्वेश्चन नहीं है, इट्स एक्चुअली हाउ डिड द आइडिया ऑफ प्रोटेक्शन बिकम अटैच्ड टू ह्यूमन रिलेशनशिप। और फिर इंडियन सोसाइटी ने उस आइडिया को डिफरेंट फॉर्म्स में डेवलप किया है ना। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। श्रावण पूर्णिमा खुद के मल्टी लेयर्ड कल्चरल डेट है। सेम फुल मून, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट रिचुअल्स, डिफरेंट मीनिंग्स। इसलिए अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आपको नारली पूर्णिमा मिल सकती है। साउथ इंडिया में के कुछ कम्युनिटीज में इसी पीरियड में उपकर्मा या अवानी अवितम इम्पॉर्टेंट है। गुजरात में पवित्र पाना एसोसिएटेड ट्रेडिशंस मिल जाएंगे आपको। ओडिशा में गमा पूर्णिमा और नॉर्थ इंडिया में रक्षाबंधन। यानी कैलेंडर एक कल्चरल लैंग्वेज इज अनेक और यही इंडिया है। अभी हमें हिस्टोरिकल फाउंडेशन भी समझते हैं। लेकिन अब आती है मैथोलॉजी और यहाँ से कहानी और फैसिनेटिंग हो जाती है। बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज कनेक्टेड विद द रक्षाबंधन इवॉल्व्स, जो शायद आप सब जानते होंगे, कृष्णा और द्रौपदी। लेकिन जो स्टोरी हम सबने सुनी है क्या वो एग्जैक्टली महाभारत में वैसी ही लिखी है? इसका जवाब हम अगले सेगमेंट में सुनेंगे। मीनवाइल एंजॉय दिस।
2: Shopping for your next car? LeafCars.com puts everything in one place so you can search, compare, and buy with confidence. Choose from thousands of new and used vehicles backed by our trusted network of local dealerships with expert service, convenient locations, and flexible buying options. LeafCars.com makes the entire process simple. Start online and drive home with peace of mind. LeafCars.com. It's easier here.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: ट्रायंगल, आर यू रेडी? फॉर द फर्स्ट टाइम इन रालीदुरम, रेडियो नायरा एंड चेरिश्ड मोमेंट्स प्राउडली प्रेजेंट भजन क्लबिंग, अ कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल वेयर डिवोशन मीट्स द बीट एंड ब्रिंग्स जनरेशन टुगेदर। Bring your family and friends for an unforgettable evening of bhajans, music, dance and celebration featuring AJ the DJ. Plus, enjoy exciting raffles to win and celebrate for a cause. A portion of the proceeds will benefit Radha Krishna Temple. Saturday, September 5th, 7 to 11 p.m. at Hooky Entertainment, Keri. Tickets on Eventbrite. For more details, call 628-258-9983. That's 628-258-9983 or email info@radionaira.com. Bhajan Clubbing, one rhythm, one heart, one divine celebration.
2: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल।

इन पे टैक्स खर्चूंगी। अरे आओ कमेटी वालों लगाओ इन पे टैक्स खर्चूंगी। साड़ी पेटी कोट के ऊपर कब्जा करके लूंगी, अरे कब्जा करके लूंगी। तौबा तौबा आज की छोरी बन गई एक ड्रामा।

0: Welcome back to Sansara Radio 99.9 FM, HD4 101.9 FM और 1490 AM. मैं हूँ प्राची. अब आते हैं उस कहानी पर जो रक्षाबंधन के साथ सबसे ज़्यादा पॉपुलरली एसोसिएट की जाती है, हमारे प्यारे कृष्णा और द्रौपदी जी. पॉपुलर रीटेलिंग्स में हम सुनते आए हैं कि कृष्णा की उंगली से खून निकला और द्रौपदी ने अपनी चुन्नी का एक पीस टेयर करके कृष्णा के फिंगर पर बांध दिया. कृष्णा उस अफेक्शन को याद रखता है और लेटर डाइस हॉल जब एपिसोड में था द्रौपदी की ह्यूमिलिएशन के वक्त कृष्णा उनकी रक्षा करते हैं. कितनी ब्यूटीफुल स्टोरी है ना. लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल लिटरली डिस्टिंक्शन करना ज़रूरी है. महाभारत के क्रिटिकल टेक्स्ट में इस सीन को मॉडर्न रक्षाबंधन सेरेमनी के रूप में डिस्क्राइब नहीं किया गया है. द्रौपदी कृष्णा रिलेशनशिप और कृष्णा प्रोटेक्शन ऑफ द्रौपदी की जो ट्रेडिशन है, लेकिन द्रौपदी ने कृष्णा को राखी बांधी वाली डायरेक्ट एसोसिएशन लार्जली लीडर कल्चरल इंटरप्रिटेशन एंड पॉपुलर रिटेलिंग है ना. और मुझे लगता है ये थोड़ा सा बताना चाहती थी कि बिकॉज माइथोलॉजी की ब्यूटी को प्रिजर्व करने के लिए फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करना ज़रूरी नहीं है. हम कह सकते हैं ये एक पॉपुलर ट्रेडिशनल एसोसिएशन है आई गेस, और फिर उसकी इमोशनल मीनिंग समझ सकते हैं बिकॉज एक्चुअल लेसन बहुत पावरफुल है. प्रोटेक्शन एक ट्रांजेक्शन नहीं, द्रौपदी ने क्लोथ बांधा नॉट बिकॉज शी एक्सपेक्टेड समथिंग, शी रिस्पॉन्डेड टू समवन्स पेन. एंड लेटर कृष्णास प्रोटेक्शन ऑफ द्रौपदी बिकम्स अ सिंबल ऑफ दैट बॉन्ड. यानी आपने मेरे लिए कुछ किया था, मैं आपके लिए खड़ी रहूंगी. और इसमें रक्षाबंधन का मॉडर्न इंटरप्रिटेशन भी मिल सकता है ना. प्रोटेक्शन इज रेसिप्रोकल. एक और ब्यूटीफुल एंगल है, द्रौपदी और कृष्णा बायोलॉजिकली सिब्लिंग्स नहीं थे, फिर भी उनका रिलेशनशिप डीपली अफेक्शनेट था. This gives us an interesting question. क्या हर protective relationship, blood relationship होना ज़रूरी है? Maybe not. Indian culture imaginations में brotherhood और sisterhood कभी कभी biological family से बाहर भी extend होते रहा है ना. और इसलिए राखी का symbolic power सिर्फ DNA से नहीं आता, it comes from trust and obligation. और चाहे अब चलिए एक और स्टोरी की तरफ. कृष्णा और द्रौपदी स्टोरी के साथ एक और एंशिएंट ट्रेडिशन प्रोटेक्टिव थ्रेड को और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में दिखाती है. इंद्रा और इंद्राणी की अगर सुना है आपने तो, यहाँ रिलेशनशिप ब्रदर एंड सिस्टर का नहीं है ना, हस्बैंड वाइफ और सिचुएशन वॉर. इंद्रा बैटल पर जा रहे हैं, ट्रेडिशन अकाउंट में इंद्राणी प्रोटेक्टिव रिचुअल के कॉन्टेक्स्ट में थ्रेड बांधती है. यानी अगेन रक्षा सूत्र इक्वल्स टू प्रोटेक्शन बिफोर डेंजर. So this is important because it tells us the idea of protective thread existed beyond modern Rakhi's sibling structure. और फिर एक और fascinating story है, यामा the god associated with death और यमुना his sister. Traditional story के according यमुना अपने brother को invite करती है. यामा फाइनली उनके घर जाते हैं, यमुना उनकी हॉस्पिटलिटी से वेलकम करती है. यामा खुश होते हैं और वरदान देते हैं. द स्टोरी इज कनेक्टेड इन ट्रेडिशनल विथ सिबलिंग अफेक्शन एंड लॉन्गेविटी. इंटरेस्टिंगली इंडिया में सिबलिंग फेस्टिवल एक ही नहीं है, रक्षाबंधन, भाई दूज, यामा द्वितीय जिसको बोलते हैं ना, डिफरेंट फेस्टिवल, डिफरेंट रिचुअल्स बट सिमिलर इमोशनल आर्किटेक्चर राइट. सिबलिंग्स अफेक्शन, ब्लेसिंग्स, लॉन्ग लाइफ. इसी एक और चीज समझ आती है कि इंडियन फेस्टिवल्स वर नॉट नेसेसरीली क्रिएटेड एज एन आइसोलेटेड इवेंट्स. दे इवॉल्व विद ह्यूज कल्चरल इकोसिस्टम ऑफ माइथोलॉजी, सीजन्स, लूनर कैलेंडर्स एंड फैमिली रिलेशनशिप्स. तो जब हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं, हम एक सिंगल स्टोरी नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सेंचुरीज ऑफ स्टोरीज, रिचुअल्स एंड रिइंटरप्रिटेशंस का पार्ट बन रहे हैं. और मुझे लगता है ये जान लेना फेस्टिवल को और ब्यूटीफुल बना देता है ना. बिकॉज नाउ द राखी ऑन योर रिस्ट इज नॉट जस्ट ये मैंने भाई को बांध दिया, इट बिकम्स लाइक मैं एक बहुत पुरानी कल्चरल ट्रेडिशन पे का पार्ट हूँ. और नेक्स्ट सेगमेंट में हम हम बात करेंगे थोड़ी माइथोलॉजी से निकल कर हिस्ट्री की दुनिया में जाएंगे, और वहाँ से एक बहुत फेमस स्टोरीज़ हैं रुक्सान एंड पोरस की, ठीक है, वो मैं बताती हूँ. सो मीनवाइल एंजॉय दिस सॉन्ग. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वॉज दैट अ क्विक रिमाइंडर टू रैली डरहम भजन क्लबिंग कृष्णा जन्माष्टमी स्पेशल इज हैपनिंग दिस सैटरडे सेप्टेम्बर 5th फ्रॉम 7 PM टू 11 PM एट हुकी एंटरटेनमेंट इन कैरी. सो फीचरिंग एज द डीजे इज इट्स एन अपलिफ्टिंग फैमिली फ्रेंडली इवनिंग ऑफ डिवोशन म्यूजिक एंड सेलिब्रेशन. अर्ली बर्ड टिकट्स आर सेलिंग फास्ट, सो बुक नाउ ऑन in Eventbrite. Okay, for details call 628-258-9983. Once again, 628-258-9983. Presented by Radio Naira and Cherished Moments.
1: Your talent brought you this far. Your dreams can take you even further.
2: But when immigration questions stand between you and your future, you need more than just information. You need trusted legal guidance and a team that responds.
1: With over 100 years of combined attorney experience, Brown Immigration Law focuses exclusively on immigration law, helping professionals, families, students, entrepreneurs, and businesses navigate the U.S. immigration system.
2: And the best part? Their North Carolina immigration team is located right here in the Raleigh-Durham area, ready to serve our growing community, as well as clients across the country.
1: Need guidance with an H-1B, L-1, employment-based green card, perm process, or business immigration matter?
2: Planning to reunite your family, adjust your status, or become a U.S. citizen?
1: Clear communication, personal attention, and trusted legal advice from Brown Immigration Law.
2: Your future shouldn't have to wait. Call 919-225-3963. That's 919-225-3963.
1: Or visit brown-immigration.com.
2: Brown Immigration Law, local guidance for your immigration journey. Bigger dreams begin with Brown.

0: Yonara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM.
1: हेलो वेलकम बैक, मैं हूं रांची और आप सुन रहे हैं सनसेट रेडियो 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम और 4090 एएम. वैसे आप लोगों को अगर इंटरेस्टिंग कुछ भी बताना हो तो रिलेटेड टू राखी प्लीज़ डू कॉल मी ऑन 919-999-8595 पर. सॉरी अबाउट द कॉल. एंड द थिंग इज़, हाँ मैं आपको बता रही थी, अब आज का थोड़ा शो इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज रक्षाबंधन के अराउंड दो स्टोरीज बहुत फेमस हैं. पहली अलेक्जेंडर की वाइफ रोक्साना और किंग पोरस की, और दूसरी एक रानी कर्णावती और मुगल एम्परर हुमायूं की. सो दोनों स्टोरीज में एक कॉमन एलिमेंट है, अ प्रोटेक्टिव थ्रेड क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप वेयर देयर वाजंट वन बिफोर. लाइक पॉपुलर स्टोरी के अकॉर्डिंग अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया में पोरस से वॉर करने जा रहे थे. अलेक्जेंडर की वाइफ रोक्साना को फियर था कि अगर अलेक्जेंडर मर गए तो पॉपुलर लेजेंड कहता है कि रोक्साना ने पोरस को राखी भेजी. उसने उसे सिम्बॉलिक ब्रदर माना, और बैटल के टाइम पोरस ने अलेक्जेंडर को मारने के बजाय उस सिम्बॉलिक बॉन्ड का रिस्पेक्ट किया. ब्यूटिफुल स्टोरी, वेरी सिनेमेटिक, बट हिस्टोरिकल एविडेंस क्या? स्ट्रॉन्ग कंटेम्पररी एविडेंस नहीं है जो कंफर्म करे कि रोक्साना एक्चुअली पोरस को राखी भेजने वाली इवेंट हुई थी या नहीं. लेकिन इसलिए रिस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलिंग में हम इस पॉपुलर लेजेंड, इसे पॉपुलर लेजेंड कहते हैं. एंड दिस इज एक्चुअली मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज समटाइम्स अ स्टोरी बिकम्स कल्चरली पावरफुल इवन वेन हिस्टोरियंस कैन नॉट एस्टैब्लिश द इवेंट एज फैक्ट. Now let's come to another famous story. It's Rani Karnavati ji of Mewar and Humayun. So popular narrative says that Karnavati, facing danger from Bahadur Shah of Gujarat, sent Humayun a rakhi asking for protection. So Humayun supposedly accepted her as a sister and responded again, right? So beautiful story. But historical evidence for the exact Rakhi episode is disputed. Historians have questioned the tradition account, and contemporary sources don't provide the straightforward confirmation that popular retelling suggests. So what do we do? Do we throw the story away? No, we understand it differently. We say that this is a powerful later tradition associated with Rakhi, but the historical claim is not firmly established. And that distinction matters because history isn't less beautiful when we admit uncertainty. In fact, it becomes more fascinating. Hana, imagine India of centuries ago, different kingdoms, different religion, different political interests, different languages. And in that world, the idea of symbolic kinship could have tremendous social power. A thread could say, you are not a strong stranger to me now. Now think about that. If someone calls you brother or sister, suddenly the social relationship changes. You may feel obligation, responsibility, trust, protection. That's the power of symbolic kinship. And this is why Rakhi can be understood not merely as a household ritual.
2: You're listening to WCMC-FM, Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM, WDUR Durham,

0: Naira 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi. 99.9 Naira me kho
1: jao. आज सिम्स मेरा फनी डे है, बहुत सारे फनी इंसिडेंट्स हो रहे हैं. एनी वेज, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट. दैट्स द पावर ऑफ सिम्बॉलिक किनशिप, एंड दिस इज़ वाई राखी कैन बी अंडरस्टूड नॉट मेरली एज अ हाउस होल्ड रिचुअल बट ऑल्सो एज अ सोशल सिम्बॉल, राइट? सो इंडिया हैज़ मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेशनशिप बींग क्रिएटेड सिम्बॉलिकली. गुरु शिष्य, मित्र, बंधुत्व, chosen family. Rakhi fits into that broader cultural tendency, and then we reach one of the most historically significant transformations of Raksha Bandhan. And main aage jaun, usse pehle aap ye beautiful song suniye. I'll be back.

0: Welcome back to Sunzera Radio, Nara 99.9 FM, HD4, 101.9 FM और 4090 AM. मैं हूँ प्राची. और जैसे कि हम बात कर रहे थे रक्षाबंधन के बारे में, रिलीजनल और हिस्टोरिकल बातें. सो बिफोर आई स्टार्ट फॉरवर्ड, वी हैव अ कॉल. लेट मी अटेंड दैट वन सेकेंड. हेलो. हाय.
1: Hi, how are you, Prachi?
0: Hi, I'm good. How are you?
1: Well, actually, I'm not. We're like three people on the call, so I'll say we are good.
0: Oh, awesome. Three people. Amazing. How are you guys?
2: Good. Hi, Prachi.
0: So, kya ye bhai behno ki judi hai ye?
2: Ji.
0: Aye, wow.
2: Bhai behno ki hai.
0: Nice.
1: बताइए. दो कमीनों की है.
0: ओके. हाँ, कमीना भाई होता है, मतलब इनडायरेक्टली वही हो गया.
1: आई होप एवरी ब्रदर इज लिसनिंग टू दिस.
0: ओके. या
1: हाँ, बस कमीने होते हैं भाई, प्यार भी उतना ही करते हैं ना अपनी बहनों से.
0: नहीं, बहनों को तो सिर्फ गिफ्ट आई गेस, सिर्फ गिफ्टों से प्यार होता है. फिर उसके बाद तब तक अच्छा होता है भाई, फिर कमीना हो जाता है.
1: Exactly. I mean, we call it the law of cycle of life or something when it comes to that relation of siblings. And I had the most wonderful and amazing experiences out of that, because I myself have an elder sister, and तो मैंने जूते भी खाए हैं, मैंने सीक्रेट्स भी उतने रखे हैं, और सीक्रेट्स बताए भी हैं कभी जब मुझे उसकी यूज करनी थी. Overall, it's the best thing in the world. When you have that special bond with your sisters, you can't actually have that bond with your brothers as much as you can have it with your sister.
0: Lifetime best friend wala jo cheez hota hai na, first best friend, wo aapko apni behan mein mil jata hai agar badi, especially badi behan ho to.
1: Jab badi hoti hai. Exactly.
0: Hai na? Definitely. मैं भी मेरे भाई को यही बोलना चाहूंगी कि यू, तुझे खुद देखो, तुझे तेरे मुझ में तेरे को एक बेस्ट फ्रेंड मिल गई है अलग के लिए. नाइस नाइस. और कुछ बताओ. यस.
1: तो जैसे मैं आपको बोल रहा था कि मेरी, मैं तो बहन को साथ में ले गया हूँ हाथ पकड़ के. मैंने कहा चलो शादी करते हैं.
0: नहीं, क्या बात. चलो बहन जी, बहन बताइए.
2: मुझे एक सवाल पूछना है प्राची जी. मैं आपको तो हमेशा सुनती हूँ. मैं नेहा बोल रही हूँ, अगर आपने मुझे पहचाना नहीं तो.
0: ओहो, ओके. हाय हाय नेहा. वाओ. तो नेहा, आप अपने भाई को लाई हो या आप, वो आपको लेकर आए?
2: हम दोनों ही सुनते हैं. मैं इसको जबरदस्ती बोलती हूँ, सुन सुन सुन, मेरी दोस्त है, सुन सुन, बहुत अच्छा बोलती है ये.
0: अच्छा.
2: तो ये भी सुनता आपको. अच्छा सुने, आपकी बात सुन रही थी मैं. राखी होती है ना, तो राखी पे आपने बोला इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो द्रौपदी. कौन थी?
0: हाँ, भी द्रौपदी, कृष्णा द्रौपदी. हाँ, द्रौपदी ने बांधी थी. हाँ,
2: कृष्णा ने, देख द्रौपदी ने कृष्णा को राखी बांधी उंगली पे. तो हम हाथ पे क्यों बांधते हैं?
0: नहीं, उन्होंने राखी नहीं बांधी थी, उन्होंने खून आ गया था, तो उन्होंने उंगली पे खून आया था तो बांध दिया था. वेल, वेरी गुड क्वेश्चन. सो राखी इज टाइड ऑन द रिस्ट रदर देन फिंगर, बिकॉज द रिस्ट इज मेजर पल्स पॉइंट है ना. दैट सिम्बोलाइज एक्चुअली एक्शन, स्ट्रेंथ एंड लाइफ लॉन्ग बाइंडिंग ऑफ ड्यूटी. सो दैट्स द रीजन आई गेस कि रिस्ट में हम बांधते. वो तो एक्सीडेंटली उन्होंने वहाँ पे खून निकला इसलिए बांधा, और उन्होंने अपना कर्ज चुकता किया कृष्णा ने. बट दिस शुड बी द रीजन. या आगे फिर हिस्ट्री जाने कि हम राखी क्यों बांधते, पर मेरे हिसाब से ये है. या
2: अच्छा. आप लकी हैं, जब आपका सारी स्टोरी सुनाती है आपको कोई क्वेश्चंस नहीं पूछता ना, इसलिए मैं कॉल करके पूछ लेती हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप ऐसी स्टोरी सुना रही हैं, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा. तो मैं पूछ लेती हूँ.
0: बिल्कुल. अच्छा ना, नॉलेज बढ़ानी चाहिए. और अगर नहीं है, अगर नहीं होगा मेरे पास आंसर, आई लेट यू नो. डेफिनेटली आप साथ में आंसर भी सोच के आना, फिर बताना मुझे. अरे आई स्पाइस, ऐसा नहीं है.
2: कई बार ऐसा भी हो सकता है आपको नेक्स्ट एपिसोड में आंसर बताना पड़े, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था.
0: हाँ, एब्सोल्युटली. या पॉसिबली.
1: एब्सोल्युटली आपने भी एक चीज आज सीखी होगी ना प्राची, हाउ अनोइंग इट इज व्हेन योर सिस्टर्स आस्क यू क्वेश्चंस.
0: हाँ, लकीली आई एम द एल्डर वन इन द हाउस सो नोबडी डेयर्स टू आस्क मी क्वेश्चन.
2: शायद इज लाइक देख लो मेरी बहन कितनी अनोइंग है, मैं ही झेल सकता हूँ इसको.
0: ओके,
2: मैं आपको प्रूफ करवाने लाया हूँ यहाँ पे.
1: एग्जैक्टली,
0: सो हैप्पी रक्षाबंधन टू यू गाइस.
2: ब्यूटिफुल
0: जोड़ी हाँ भाई बहन की. सो एक सॉन्ग प्ले करती हूँ, फिर आपके लिए आपका सॉन्ग मैं आपके लिए प्ले करती हूँ.

Welcome back to Sun Zero Radio Night on 99.9 FM HD4, 101.9 FM or 4090 AM. इनकी बातें सुनकर thought to see like अब history की books बंद करती हूँ. Mythology की कहानियाँ थोड़ी देर के लिए side रख. अब चलिए घर के drawing room में. राखी का असली battlefield है ना, real time वाला. भाई सोफे पर है, sister राखी लेकर खड़ी है. मम्मी पूजा की थाली लेकर आ रही है, पापा बैठे हैं वेट कर रहे हैं कब लगाएंगे. और हमारे यहाँ पे यही होता था भाई, पहले ही क्वेश्चन होता था कि गिफ्ट क्या मिलेगा. और भाई पहले राखी बांध फिर बताता हूँ, नहीं पहले बताओ क्या दोगे. फिर यही डिस्कशन बार्गेनिंग चलता था कि भाई 1000 से शुरू करो, 1000 रुपये वो आता था, 700-800 बार्गेनिंग चल रहा था, वो 50 पे लाने की कोशिश करता. इतने ऐसे ऐसा भाई परेशान करता, पूछो मत. क्या आप लोगों के साथ भी यही होता था? और बेसिकली फिर मेरा रोना शुरू, मम्मी. और मम्मी का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जो देना है दे दे और राखी बंधवा फटाफट. लेकिन बचपन की राखी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था कंपटीशन, है ना, किस भाई को किस बहन को सबसे अच्छा गिफ्ट मिला, किसको किसकी राखी सबसे सुंदर है, सारे कजिन्स को क्या क्या, मतलब सारे कंपटीशन में लगे होते किसे, और दिखा के आते थे मुझे कितनी राखी किसने बांधी वगैरह. सो वही कि बट बिनीथ ऑल दिस कॉमेडी वॉज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. चिल्ड्रन लर्न रिलेशनशिप थ्रू रिचुअल्स. अ चाइल्ड मे नॉट अंडरस्टैंड द फिलोसॉफिकल मीनिंग ऑफ प्रोटेक्शन, बट दे अंडरस्टैंड दिस इज माई ब्रदर, दिस इज माई सिस्टर, एंड वी सेलिब्रेट ईच अदर, एंड दैट बिकम्स पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी. नाउ थिंक अबाउट सिबलिंग रिलेशनशिप्स. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर ऑफन ईच अदर्स अर्लीस्ट सोशल कॉम्पिटिटर्स, है ना. सेम पेरेंट्स, सेम हाउस, समटाइम्स सेम रूम, सेम अटेंशन, सेम टॉयज, एंड येट सेम फैमिली. दैट्स वाई सिबलिंग रिलेशनशिप कैन बी यूनिकली इंटेंस, बिकॉज देर इज अ लेवल ऑफ सिक्योरिटी अंडरनीथ द फाइट. यू नो दिस पर्सन इज स्टिल गोइंग टू बी देयर टुमारो, एंड दैट इज परहैप्स वन रीजन सिबलिंग टीज ईच अदर सो मच. यू कैन से तो कितना इरिटेटिंग है, बट इफ समवन एल्स सेज यू Your brother is irritating, है ना. Suddenly, excuse me, who asked you, है ना. Full, मतलब दादागिरी पे आ जाते थे हम. So sibling constitution, like I can fight with you, you can not fight with my sibling. I can make fun of you, you cannot. I can complain about you, but if someone else complains, I'll defend you. This is siblinghood. And Raksha Bandhan celebrates that complicated combination, love, irritation, loyalty, history. Because your sibling is often the person who remembers things nobody else remembers, right? Your childhood nickname, your embarrassing school stories, the time you broke something and blamed someone else. Your first crush, your first failure, your parents' old house, your grandparents, the old family jokes. They carry our history, and that's a profound form of intimacy. Your spouse may know who you become, your friend may know who you are, but your sibling may know who you were before you become anyone. And perhaps that's why Rakhi can feel emotional even for adults. Because when that thread goes around your wrist, you're not just thinking about today's relationship, you're remembering 20 years of it, and sometimes 30, sometimes 50. That's why festivals become memory containers, and a single Rakhi can contain an entire childhood. Maybe the greatest gift as a sibling can even can give you is not the money, it's this: I remember you, I remember the little you, I remember where we came from, I remember our people, I remember our story. So this is the thing Raksha Bandhan is about, is for us, right? Listen to this beautiful song. And this is for you guys, Neha and her brother.

मम्मी देखो ऑल ऑफ इट, एंड देन यू रियलाइज दोज वर द गुड गोल्ड गोल्ड ओल्ड गोल्डन डेज. सो व्हाट इज द वन मेमोरी विद योर सिबलिंग दैट यू वुड नेवर वॉन्ट टू लूज? थिंक अबाउट दैट. नॉट द बिगेस्ट इवेंट, नॉट द एक्सपेंसिव गिफ्ट, जस्ट वन ऑर्डिनरी मोमेंट, बिकॉज समटाइम्स ऑर्डिनरी इज वॉट बिकम्स प्राइसलेस, है ना? सो लिसन टू दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड आई विल बी बैक.

0: Welcome back to Radio Naira on Zero Radio 99.9 FM, HD4 101.9 FM, 1490 AM per. And here we have a caller. Let's talk. Hello.
1: Hi, Prati. How are you?
0: I'm good. How are you?
1: I know you recognize me. I'm Ramisa.
0: Hi, Ramisa.
1: Hi. Happy Raksha Bandhan Day.
0: Happy Raksha Bandhan Day.
1: So the thing is, I don't have brother, but we are actually two sisters. So, but no, honestly, I have never felt like I was missing one, because she is the one. She is my everything, my sister, my brother, and my best friend. So I can wish to her, right?
0: Yes, of course.
1: क्योंकि
0: कहाँ रहती है आपकी बहन?
1: Oh, she is living in Sydney,
0: Australia. Oh, wow.
1: Yeah, I'm living in USA, but she is living in Australia. बहुत
0: दूर है ना, पर अभी मैंने कहा था डिस्टेंस चल सकता है, पर समझ गए दूरियां नहीं, ठीक है ना? या इमोशनल दूरियां नहीं. या
1: एग्जैक्टली. सो आई वांट टू शेयर समथिंग. बहुत सारी मेमोरीज है हमारे, मतलब सारे भाई बहन के बहुत अच्छे अच्छे स्वीटेस्ट मोमेंट्स होती है. तो उसमें से सबसे स्पेशल जो है, मतलब वन ऑफ द स्वीटेस्ट मेमोरीज आई वांट टू शेयर हियर, हाउ शी ऑलवेज रिमेम्बर्ड माय बर्थडे फ्रॉम सच अ यंग एज. And she would save her little pocket money. मम्मी हमेशा उसको मतलब टिफिन के टाइम हमें मनी देते, तो वो छुपके से वो अपने छोटा छोटा बैंक करते थे और हमें किसी को भी वो टच नहीं करने देते थे. अब वो किसके लिए कर रहे हैं, वो उसके फ्रेंड्स के लिए भी कर सकती है. तो मैं देखती थी कि वो मुझे बर्थडे पे ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट देती थी और हमेशा सरप्राइज देते थे. मतलब शी ऑलवेज केयर्ड सो मच अबाउट माई हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग. मुझे पता भी नहीं होता था कि वो कहाँ से ऐसे गिफ्ट लेके आती है, उसके दिमाग में कहाँ से आती है, बट हमेशा मुझे सरप्राइज देती थी वो.
0: Oh, nice.
1: और हाँ, और सबसे बुरा जो चीज है, I never remembered her birthday on time. So, वो बहुत हर्ट हो जाती थी. तो मुझे वो बाद में पता चलता था, मम्मी बोलते थे, अदरवाइज उसके फ्रेंड्स बोलते थे, तो मुझे वो बहुत बुरा फील होता था. बट यू नो राइट, उस टाइम मतलब आप सॉरी भी बोलो, कुछ भी करो, उसके लिए बहुत सारी वो जो हार्ट होती थी ना, उसका जो चेहरा हो जाती थी, तो मुझे वो चीज बहुत मतलब अभी मुझे समझ में आ रहा है कि एक्चुअली वो मेरे लिए कितना करती थी.
0: ऑफ कोर्स है ना, दूरी सब याद दिलाती है, वही यही तो सच्चा प्यार है.
1: समटाइम्स लाइक कपल्स भी शायद ऐसा नहीं कर सकते जितना वो मुझे करती थी.
0: पैम्पर.
1: तो वो ऑलवेज केयर कर देते. तो मैं उसको बोल रही हूँ, अगर वो आपका वो जब बाद में ब्रॉडकास्ट होगा तो मैं ऑब्वियसली मैं उसको सुनाऊंगी. तो मैं तब जब वो उसके पास ये मैसेज जाएगी, हर नेम इज साक्षी. सो साक्षी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड आई एम ट्रूली सॉरी दैट आई हैव फॉरगॉटन your birthday so many times and couldn't wish you on time. I know that hurt you and I really really regret about this, and thank you for always being there for me, for every surprise, every gift, every memory, and most importantly for being with me always. And I love you so much. I'm forever grateful that I got you as my sister.
0: Aww.
1: Happy Raksha Bandhan Day, my soulmate. अगर आप उसको पूछोगे, वो always जवाब देती थी कि who is your soulmate? Still, she has three baby. She carries three babies, but still वो बोलती है कि my sister is my elder sister is my soulmate.
0: Oh, that's so touchy. Wow, thank you for sharing this, Ramisa. That was really beautiful, and I'm glad you guys share such a beautiful bond together.
1: Thank you.
0: Nice.
1: Thank you, sir.
0: Take care.
1: आप कोई भी अच्छे बहुत अच्छे अच्छे
0: हाँ मेरे पास एक ब्यूटीफुल सॉन्ग है वैसे भाई का है शी इज लाइक योर ब्रदर सो आई विल प्ले दैट फॉर यू ओके
1: नो प्रॉब्लम थैंक यू प्राची
0: सो ब्यूटिफुल राइट सिस्टर्स भी भाई होती हैं मेरी भी बहन है शी वॉज लाइक फॉर लॉन्ग टाइम वो भी मेरे भाई की जैसे ही थी ऑलवेज सो लव टू माई ब्रदर एंड सिस्टर हैप्पी रक्षाबंधन गाइज सो दिस रक्षाबंधन डोंट ओनली टाई द थ्रेड टाई द मेमरी टाई द प्रॉमिस टाई द ग्रेटिट्यूड टाई द वर्ड्स यू समटाइम्स फॉरगेट टू से लाइक थैंक यू आई लव यू आई एम प्राउड ऑफ यू आई एम हियर एंड इफ यू आर फार अवे फ्रॉम इंडिया टुडे मे बी यू वोंट हैव द सेम हाउस मे बी यू वोंट हैव द सेम मिठाई शॉप मे बी यू वोंट हैव द सेम कोर्ट यार्ड मे बी यू वोंट हैव द सेम फैमिली गैदर अराउंड यू बट रिमेंबर होम इज समटाइम्स अ पर्सन है ना एंड समटाइम्स दैट पर्सन इज द ओनली वन फोन कॉल अवे सो पिक अप दैट फोन कॉल योर सिबलिंग एंड डोंट मेक द कन्वर्सेशन अबाउट लॉजिस्टिक्स डोंट आस्क ओनली गिफ्ट भेजा एंड ब्ला ब्ला राइट जस्ट से कैसे हो सो आज का सफर यहीं तक मगर अगली मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ एक नए एहसास के साथ और एक नई कहानी के साथ तब तक अपने रिश्ते संभाल कर रखिए क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ रिप्लेस हो सकता है लेकिन अपने लोग इरिप्लेसिबल होते हैं हैप्पी रक्षाबंधन एवरीवन स्टे कनेक्टेड स्टे काइंड एंड कीप लिसनिंग टू सुन जरा

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

रेडियो नायरा पर बजेगा सिर्फ बेस्ट हिट्स। नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Farrell. Yeah.
1: भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना,
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

0: हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूँ सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरज पराग। 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। कैसे चल रही है आज की आपकी इवनिंग? तो स्टार्ट करते हैं शो की कुछ धर्म रैली एंड RTB के लोकल न्यूज़ के साथ। तो सबसे बड़ी न्यूज़ आज मेरे पास आ रही है AI के बढ़ते उपयोग के कारण इन हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स में बिजली की भारी खपत, कूलिंग लिक्विड और बैकअप जनरेटरों से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता जताई जा रही थी। एंड बहुत बड़े एंड छोटे से छोटे डेटा सेंटर्स को अब प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। नए आवेदनों को अब अपनी बिजली की ज़रूरत और कूलिंग तकनीकों की लिखित जानकारी देनी होगी। एंड डरम का डेटा सेंटर्स पर 9 महीने का जो है वो प्रतिबंध लग चुका है। एंजॉय करते हैं अगला गाना।
1: हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में, क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू? What happened?

0: होगा कि मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

आसान वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो डरहम काउंटी के अधिकारियों ने बड़े डेटा सेंटर्स बनाने पर 9 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब 9 महीने तक कुछ भी डेटा नए सेंटर्स नहीं खुलेंगे। कारण ये डेटा सेंटर्स AI के लिए चलते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बिजली और पानी का इस्तेमाल होता है। इससे पर्यावरण को नुकसान होने का डर है। 100000 स्क्वायर फीट से छोटी इमारतों पर ये रोक नहीं है। नए प्रोजेक्ट्स को अब अपनी नई बिजली और कूलिंग की योजना पहले सरकार को बतानी होगी एंड उसके बाद सरकार डिसाइड करेगी कि ये कंपनियां कैपेबल है या नहीं एंड उसके बाद उन्हें डिसीजन देना पड़ेगा। इट्स लाइक नेचर पर अगर इसका दुष्परिणाम हो रहा है तो डेफिनेटली ये चीज़ करनी ही चाहिए। एंजॉय करते हैं ये आग लगाना। सुनते रहेगा रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुन रहे हैं रेडियो नाइट्स। एंजॉय किया आपने गाना? गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। एंड वेक काउंटी के सरकारी स्कूल खुल गए हैं, लेकिन बच्चे और टीचर्स जो है परेशान है। ये क्यों परेशान है? क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्र के हर 3 में से 1 स्कूल में एसी खराब है। गर्मी के कारण बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। कई जगह टॉयलेट की लाइनें भी जो है वो जाम है। मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ें तो यार बच्चों के लिए फुलफ़िल होनी ही चाहिए। एंड जब तक ये बेसिक चीज़ें फुलफ़िल नहीं होती है तो बच्चों का मन पढ़ाई में कैसे लगेगा? तो दिस आर वेरी बेसिक थिंग्स जो कि सॉर्ट आउट हो रही है धीरे धीरे। एंड यार गर्मी तो इतनी है, हमें तो इतनी परेशानी होती है, तो बच्चों को कितनी परेशानी हो सकती है? एंजॉय करते हैं अगला गाना, सुनते रहिएगा रेडियो नायरा। मैं हूँ सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 रहता हूँ मैं आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस। एंजॉय करते हैं अगला गाना, रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरापण निर्वाणा नाइट्स एंड रैले। शहर के प्रशासन ने सैकड़ों लोगों को पानी के नियम तोड़ने की नोटिसेस भेजी है। रियली यस। एंड बाद में पता चला कि सरकारी सिस्टम के गलती के कारण ये नोटिस चले गए हैं। इस वजह से काफ़ी लोग नाराज है। एंड एनसी स्टेट यूनिवर्सिटी दैट इज एनसी स्टेट ने अपनी पूर्व छात्रा और मशहूर अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच के सम्मान में कैंपस की एक बिल्डिंग का नाम उनके नाम पर रखा है। क्या बात है। इसके अलावा आज सुबह तड़के आसमान में जो स्पेस एक्स के स्टारलिंग सैटेलाइट की चमक जो है वो साफ दिखाई गई। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड एंजॉय करते हैं अगला ये गाना। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर। पक्का देसी पक्का लोकल।

आपने एंजॉय किया ये गाना गाना था, वाकई में कैसे बेहतरीन एंड जिसने सेट करके रखी है आज की शाम की ये वाइब। मौसम कैसा रहेगा ज़रूर जान लेते हैं, मौसम तो बदलते रहता है लेकिन आज की इस दुनिया में इंसान भी काफ़ी बदल रहे हैं, हर एक इंसान के अलग अलग रंग देखने मिल रहे हैं। वेल बुधवार तक मौसम अच्छा और कम उमस वाला रहेगा, तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस दैट इज 85 टू 90 डिग्री फॉरेनहाइट के बीच रहेगा। वीकेंड में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, मतलब अगर वीकेंड का आप कुछ प्लान कर रहे हो तो वो प्लान आपको अभी थोड़ा स्किप कर देना पड़ेगा क्योंकि वीकेंड में मौसम जो है वो 19-20 ऐसा नज़र आ रहा है। एंड ट्रैफिक के बारे में बात करूँ तो यार ट्रैफिक तो यूजुअली नॉर्मल है, इतना कुछ दिक्कत नहीं है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडित मदान नाइट्स, एंजॉय करते हैं अगला ये गाना, रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल।